नमस्कार, ये आकाशवाणी एडलेड है और आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2026 बुधवार का दिन है और अभी शाम के 7:30 बजे हैं और यहाँ एडलेड का तापमान इस वक्त बाहर 10 डिग्री है। तो काफ़ी ठंड हो चुकी है और आने वाले दिनों में हमें बारिश भी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तो वैसे सर्दियों से आप पूरा आनंद ले ही चुके होंगे। पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी ठंड और बारिश का मौसम रहा है और अभी फिर से बारिश आने वाली है। तो अच्छा है कि जो बारिश आएगी तो थोड़ा पानी रिजर्वायर जो है हमारे भरेंगे, उससे हमें आने वाली समर का सामना करने में आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बातें करेंगे जो अभी ग्लासगो में रिसेंटली हुए थे और जिसमें भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, प्लस और भी अन्य आर्टिकल्स हैं। अभी हम त्यौहारों के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम में अगस्त में 15 अगस्त से लेकर राखी, ओनम, ईद और उसके बाद सेप्टेम्बर में, तो यानी कि अगस्त आते ही त्यौहारों का सीज़न दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, आप लोगों से काफ़ी अच्छी आज रहेगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको ये गाना सुनाना चाहूँगा, चलिए सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये गाना पसंद आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। अभी भारत ने दोस्तों 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में हुए थे स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए, तो ये भारत की दोस्तों जो है 19th अपीयरेंस थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। और भारत ने इस गेम्स में 1934 से अपना डेब्यू किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इस जो इसमें भारत ने जो पार्टिसिपेट किया उसके 122 एथलीट्स थे जिन्होंने के पदक जीतने के लक्ष्य के साथ शामिल हुए थे। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जो है वो 39 पदक जीते दोस्तों, उसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते। तो दोस्तों ये और टोटल इंडिया की रैंक रही 4th ओवरऑल मेडल टैली में, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है दोस्तों। और जैसे कि इस बार जो ये गेम्स है दोस्तों थोड़े डिफरेंट रहे नॉर्मल, क्योंकि ये इस बार मेलबर्न में होने थे लेकिन क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम की वजह से इशू की वजह से ये मेलबर्न में आयोजित नहीं हो सके, तो इस शॉर्ट टर्म में ये गेम्स ग्लासगो में शिफ्ट करे गए। तो इसमें एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, लॉन बाउल्स, मुक्केबाजी, जूडो, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग शामिल है। तो इसमें इसमें भारत के कई जो एथलेटिक्स थे उन्होंने पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा तैराकी और पैरा ट्रैक साइकिलिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भी पार्टिसिपेट किया दोस्तों। तो अगर मैं मेडल्स की बात करूं सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए झांडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर पदकों का खाता खोला था। और उसके बाद तो ऋषिकांत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले पहले एबल बॉडीड भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता और इस दौरान उन्होंने स्नैच में एक नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड्स भी बनाया। तो दोस्तों इसका भारत का परफॉर्मेंस जो था दोस्तों, बॉक्सिंग में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इस बार, 10 मेडल जीते हैं और उसमें 7 गोल्ड थे। तो ये किसी भी नेशन के लिए एक एक स्पोर्ट में एक सिंगल कॉमनवेल्थ गेम्स का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। और इंडिया का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा दोस्तों इस बार जूडो में भी, जो कि जूडो में भारत ने 3 मेडल जीते और उसमें 2 तो गोल्ड ही थे दोस्तों। तो और मीराबाई चानू ने अपना 3रा गोल्ड मेडल जीता इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में और वो सेकेंड इंडियन टू विन 3 सक्सेसिव गोल्ड मेडल एट द गेम्स। और इस बार गुलवीर सिंह रहे जिन्होंने, उन्होंने मल्टीपल मेडलिस्ट रहे गेम्स में भारत के लिए, एंड वो जो थे भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जिन्होंने के 2 इंडिविजुअल मेडल एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते दोस्तों, सिल्वर और ब्रॉन्ज उन्होंने एथलेटिक्स में जीते। और आपको दोस्तों जानकर खुशी होगी कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो अहमदाबाद में होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि भारत जो है इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा दोस्तों। और इस जो अभी करंट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर रहा और फिर इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया जो था उसमें 4th नंबर में दोस्तों रहा। तो इस दोस्तों काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन ये ग्लासगो में दोस्तों जो कि नॉर्मल कॉमनवेल्थ में जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं इसमें काफ़ी कम स्पोर्ट्स थे इस बार, जैसे कि जो रेसलिंग थी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी समेत 9 खेलों को जो है कार्यक्रम से बाहर रखा गया था। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था हॉकी के मैच इसके लिए, लेकिन बाद में जब मैंने और इसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था कि क्योंकि ग्लासगो में ये अर्जेंटली शिफ्ट करे गए जब मेलबर्न से नहीं हुआ इनका
तो इसके बाद ये शिफ्ट करे गए, तो 9 खेलों को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया दोस्तों। बट मुझे नहीं लगता इससे भारत को कोई फ़र्क पड़ा, भारत के मेडल जो हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे आए। और उम्मीद करते हैं जब जैसे कि जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 के, तो इंडिया ने दोस्तों 39 गोल्ड जीते थे उस टाइम पर। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब अभी जो आएंगे गेम्स और भारत में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जो है सुनते हैं गाना।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। अब चलिए दोस्तों आने वाले वक्त में त्योहारों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे ही अगस्त का महीना लगता है एकदम से त्योहारों की बाढ़ सी आ जाती है दोस्तों। और अभी अगर मैं इस अगस्त 2026 की बात करूँ तो सबसे पहला त्यौहार तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है दोस्तों, 15 अगस्त, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। और दोस्तों उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे ओनम का त्यौहार आ रहा है दोस्तों 26 को। मैं दोस्तों ओनम के बारे में पढ़ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ओनम क्यों मनाया जाता है। जैसे कि ओनम जो है केरला में मनाया जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने अभी वैसे ओनम के बारे में पढ़ा और मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। उससे पहले लेकिन मैं पहले आपको त्योहारों के बारे में बता दूं दोस्तों। फिर उसके बाद ईद है जो कि 26 अगस्त को है और ईद के बाद दोस्तों राखी आ रही है जो कि बहनों के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है, जिस दिन वो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं दोस्तों। और ये 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। और फिर सितंबर आते आते तो इतने त्यौहार हैं, जैसे कि सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को दोस्तों मनाया जा रहा है। और फिर 5 सितंबर को, अगर आपने इंडिया में पढ़ाई करी है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। और जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रेसिडेंट थे उनकी याद में मनाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों गणेश चतुर्थी जो कि सितंबर में, फिर मिड सितंबर यानी कि 14 सितंबर को है। और उसके बाद इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। दोस्तों ये दिन इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ख़ास होता है दोस्तों भारत में, क्योंकि इस दिन ये डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो है उनकी उसमें याद में बनाया जाता है। वो काफ़ी बहुत बड़े जाने माने इंजीनियर थे इंडिया के, तो ये उनकी याद में बनाया जाता है। तो इसके बाद तो दोस्तों अगर मैं अक्टूबर में जाऊँगा तो फिर तो त्यौहारों का तो खैर भारत में कोई दोस्तों अंत ही नहीं है, क्योंकि त्यौहार तो इतने हैं कि शायद हम गिनते रह जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे दोस्तों। अच्छा तो मैं आपको ओनम की दोस्तों स्टोरी बता रहा था। ओनम की स्टोरी दोस्तों बहुत ही ख़ास है दोस्तों। ओनम जो है वो जो असुर राज थे महाबली, वो बहुत ही पावरफुल और जनरस राजा थे और जिनसे कि देवता भी डर गए। तो फिर वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने एक वामन यानी कि एक बोने का रूप धारण किया और जो वो असुर थे महाबली उनके पास गए और उनसे 3 जो पैर की ज़मीन मांगी। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने उनको ये वरदान दिया, भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप ले लिया और उसके बाद 2 पग में ही उन्होंने सब कुछ नाप लिया और तीसरे पग ले जगह ही नहीं बची। तो जो असुर राज थे महाबली उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। तो उसके बाद भगवान विष्णु उनसे इतने प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि जब तक ये है दुनिया है, तो जब उन्होंने ऐसा किया तो कि वो अपने जो बिलव जो उनके लोग हैं, जो उनके राज्य के लोग हैं, उनको वो हर साल विज़िट करने आ सकते हैं, मतलब कि वो एक काइंड ऑफ अमर। तो इसलिए ओनम उन महाबली उनकी याद में बनाया जाता है। और ऑब्वियसली ये जो ओनम है ये जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त हार्वेस्टिंग होती है केरला में, तो उसकी खुशी में भी बनाया जाता है। जैसे कि जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में होता है तो इसलिए होता है। तो ये जैसे पंजाब में भी मनाया जाता है दोस्तों, उस समय जैसे वैसाखी का होता है, इसी तरह जो कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है तो ये केरला में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों अब सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझना कोई खास बात नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वह इस दुनिया के सेंटर में वो खुद ही हैं। उन्हें हर समय यह भ्रम रहता है कि सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो जान लीजिए कि ऐसा करना, खुद को खास समझना या पॉजिटिव रखना बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में द स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। और क्या है ये स्पॉटलाइट इफेक्ट? द स्पॉटलाइट इफेक्ट एक सोशल साइकोलॉजी का एक टर्म है जिसमें व्यक्ति खुद पर इतना गौर करता है कि उसे लगता है कि सब उसे ही देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी फैशन के इवेंट में किसी शख्स पर खास स्पॉटलाइट पड़ती है और वो अलग नजर आता है। तो जान लेने वाली बात यह है कि इस तरह के स्पॉटलाइट इफेक्ट में व्यक्ति समझता है कि सिर्फ उसी की गलतियों को देखा जा रहा है, यानी वह हर अपनी उस छोटी गलती के लिए असहज हो जाता है। इसमें टारगेट पर वो लोग होते हैं जिन्हें सोशल एंग्जाइटी होती है। और स्पॉटलाइट इफेक्ट का क्या प्रभाव है दोस्तों? इससे दिन भर के काम पर असर पड़ता है और लोगों के आसपास भी सहज नहीं हो पाता। इसमें ज़्यादातर समय व्यक्ति परेशान रहता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लीजिए किसी दिन आप ऑफिस बगैर ठीक से बाल बनाए चले गए, तो ऐसे में आपको लगेगा कि सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों से दूर रहने या उनसे छिपने जैसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है। अब कैसे पहचाना जा सकता है इसको? तो किसी दिन जैसे नया आउटफिट पहनकर बाहर निकले और सारा दिन ऐसे ही लगता रहे कि सब लोग आपको ही नोटिस और जज कर रहे हैं, तो यह फीलिंग दिन भर सहज नहीं होने देती। और जैसे अपनी किसी आदत को लेकर भी ऐसा लग सकता है कि जिसके चलते एंग्जाइटी होना एक आम लक्षण है, और ऐसा लगना कि सब आपको ही देख रहे हैं और हर छोटी गलती पर ध्यान दे रहे हैं, ये संकेत बताता है कि कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट इफेक्ट के प्रभाव में है। और दिमाग में अतीत की बातें चलते रहना, अपनी हर बात पर ध्यान देना कि उस समय आपने क्या कहा था, ये ओवरथिंकिंग जितना नॉर्मल नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो इससे जो है बाहर निकलने की कोशिश करें। आप चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या फिर आप जो है योगा कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अब सुनते हैं एक गाना।

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ, और अब बात करते हैं दोस्तों चाय और कॉफ़ी के बारे में। अगर आपका छोटा बच्चा भी चाय या कॉफ़ी पीता है तो ये राय जो पेडिट्रिशियन जो हैं उनकी सलाह ज़रूर सुने। उनका कहना है कि कम उम्र में चाय और कॉफ़ी पीने से बच्चे की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसमें बच्चों में एंग्जाइटी बढ़ने का खतरा रहता है और उनकी नींद भी प्रभावित हो सकती है। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। आजकल दोस्तों कई परिवारों में बच्चे जो हैं वो भी बड़ों को देख कर चाय कॉफ़ी पीने लगते हैं। हालाँकि माता पिता को ये आदत छोटी और एक नॉर्मल लग सकती है, लेकिन कम उम्र में इसका सेवन बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पेडिट्रिशियन की माने तो उनके मुताबिक चाय कॉफ़ी बच्चों के शरीर पर कई तरह से असर डाल सकती है, और इसी बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों पेडिट्रिशियन कहते हैं कि अगर आपका बच्चा चाय या कॉफ़ी पीता है तो ये आदत तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार 5 साल से छोटे बच्चों को चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वहीं अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कैफीन वाले पेय पदार्थों से दूर रखने की सलाह देती है। और दोस्तों इससे जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो जो उसका उत्पादन होता है वो भी प्रभावित हो सकता है। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चे की नींद पूरी और अच्छी नहीं होगी तो उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन का जो उत्पादन होता है वो भी प्रभावित हो सकता है, तो इसका सीधा असर उसकी ग्रोथ पर पड़ सकता है। इसके अलावा नियमित रूप से चाय और कॉफ़ी पीने से बच्चों को कैफीन की लत लग सकती है और ये बच्चों की सेहत पे भी असर डालता है। दोस्तों एक्सपर्ट आगे बताते हैं कि चाय और कॉफ़ी का सेवन बच्चों की सेहत पर कई तरह से नेगेटिव असर डालता है। इससे उनकी भूख कम हो जाती है और चिड़चिड़ापन, बेचैनी और एंग्जाइटी बढ़ सकती है। इसके अलावा बच्चों को नींद भी प्रभावित उनकी होती है। रात में उनकी नींद बार बार टूट सकती है, वह सुबह जल्दी जाग सकते हैं और कुल मिलाकर उनकी नींद की अवधि कम होती है। और बच्चों को दोस्तों चाय और कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि इन पेय पदार्थों में चीनी अधिक, जैसे कि जो कैफीन वाले जो होते हैं ड्रिंक्स, उनमें जैसे चीनी की अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो उन्हें मीठे की आदत भी पड़ जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स भी इनफैक्ट डॉक्टर देने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मात्रा में कैफीन होता है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। चलिए अब सुनते हैं ये गाना।

0: for setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co., a sponsor of this program.
1: दोस्तों बात करते हैं होटलों के बारे में। दोस्तों आप जैसे होटल में आप स्टे करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि चेक इन का समय आमतौर पर दोपहर 11 बजे के बाद ही होता है और यूजुअली ये 12 और 1 के बीच का ही होटल जो चेक इन टाइमिंग बताते हैं। और सुबह अगर आप जल्दी पहुंचने पर अक्सर कहा जाता है कि रूम तैयार नहीं है, ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ऐसा भी लग सकता है कि होटल सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ये समय तय करते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे होटल के पूरे ऑपरेशन की एक स्मूथ फंक्शनिंग छिपी हुई है। और इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों होटल रूम में चेक इन अक्सर 12 बजे या उसके बाद होता है और इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ा कारण है हाउसकीपिंग को कमरा रीसेट करने का समय चाहिए होता है, जैसे उसका कमरे की सफाई और तैयारी। ज़्यादातर गेस्ट जो होते हैं वो चेकआउट सुबह 10 से 11 के बीच में ही करते हैं और उनके जाने के बाद हाउसकीपिंग टीम की ड्यूटी शुरू होती है। तो ये सिर्फ झाड़ू पोछे का काम नहीं होता है, हर कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है, बिस्तरे बदले जाते हैं, बाथरूम को अच्छे से क्लीन किया जाता है और सभी जरूरी सामान जैसे टॉवल्स हो गए, साबुन, शैम्पू वगैरह रिफिल किए जाते हैं। एक बड़े होटल में दोस्तों सैकड़ों कमरों की ये प्रक्रिया जो होती है कई घंटे लेती है, तो दोपहर 11 से लेकर 1 बजे तक का समय तो वो हाउसकीपिंग को बिना जल्दबाजी के हर कमरे को अगले मेहमान के लिए एक परफेक्ट कंडीशन में तैयार करने का मौका देता है। और दोस्तों ऑपरेशंस की फंक्शनिंग के लिए भी एक समान समय ज़रूरी है। जैसे होटल एक मशीन की तरह होते हैं जहां हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। एक फिक्स्ड चेक इन टाइम होने से फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग और मैनेजमेंट सभी के लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है। फ्रंट डेस्क स्टाफ को पता होता है कि गेस्ट की भीड़ कब आने वाली है, हाउसकीपिंग अपने शिफ्ट के हिसाब से कमरे तैयार कर सकती है और सुपरवाइज़र रूम रेडीनेस की जांच कर पाते हैं। यह कन्फ्यूजन कम करती है और हर गेस्ट को एक स्टैंडर्ड सर्विस देने में मदद करती है। और दोस्तों सफाई के अलावा कमरों की मेंटेनेंस और क्वालिटी चेक की भी ज़रूरत होती है। हो सकता है कि कोई बल्ब फ्यूज हो गया हो या कोई और इक्विपमेंट ठीक से काम ना कर रहा हो, नल टपक रहा हो या कोई और भी छोटी मोटी खराबी हो, तो चेकआउट और चेक इन के बीच का जो ये गैप मेंटेनेंस टीम को इन समस्याओं को ठीक करने का मौका देता है। साथ ही सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर हर कमरे का मुआयना करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि होटल के स्टैंडर्ड पर यह सब खरा उतर रहा है और किसी गेस्ट को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों जैसे अर्ली चेक इन से काम का फ्लो भी कई बार बिगड़ जाता है, तो अगर होटल हर किसी को अर्ली चेक इन की अनुमति देने लगे तो पूरे दिन का उनका स्केड्यूल चौपट हो जाता है। हाउसकीपिंग स्टाफ पर एक साथ कई कमरे तैयार करने का दबाव आ जाएगा और जिसके कारण सफाई और तैयारी में कोताही हो सकती है। तो नतीजा ये होगा कि मेहमान को ऐसा कमरा मिलेगा जो पूरी तरह से साफ नहीं है, जिनसे उनका अनुभव खराब होगा। और फिक्स्ड चेक इन टाइम होटल को एक व्यवस्थित और मैनेजेबल वर्क फ्लो बनाए रखने में मदद करता है। और दोस्तों होटल का बिजनेस ही है कि वे अपने कमरों को भर कर रखे। दोपहर में जो ये चेक इन का समय होटल को पहले से अनुमान लगाने में मदद करता है कि निश्चित समय पर बड़ी संख्या में कमरे एक साथ उपलब्ध होंगे। इससे जो फ्रंट डेस्क गेस्ट के आने का फ्लो आसानी से हैंडल कर पाता है और बॉटलनेक की स्थिति पता नहीं होती और ये एक स्मूथ और जो है दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड चेक इन एक्सपीरियंस देने का एक तरीका है। तो चलिए अब दोस्तों सुनते हैं एक गाना।

0: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide, Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659 or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं निकोटीन के बारे में। आजकल दोस्तों निकोटीन पाउच युवाओं के बीच तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट से अलग निकोटीन लेने के इस तरीके ने लोगों का ध्यान खींचा है। ये छोटे से सफ़ेद पाउच में आता है जिसे होंठ और मसूड़ों के बीच रखकर यूज़ किया जाता है। इसमें ना धुआं निकलता है ना स्मेल आती है। यही वजह है कि लोग इसे सिगरेट का सेफ ऑप्शन मानने लगे हैं। हालांकि इसमें मौजूद निकोटीन की लत लग सकती है। इसके अलावा हार्ट, ब्लड प्रेशर और मेंटल हेल्थ पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में निकोटीन पाउच की बढ़ती बिक्री और युवाओं में इसके इस्तेमाल पर चिंता जताई है। WHO का कहना है कि निकोटीन पाउच के टोबैको फ्री और क्लीन जैसे दावे युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे, निकोटीन पाउच कैसे काम करता है, क्या ये स्मोकिंग छुड़ाने में मदद करता है और इसके हेल्थ रिस्क क्या हैं। तो दोस्तों निकोटीन पाउच क्या है? निकोटीन पाउच एक छोटा सा सफ़ेद पाउच होता है और आमतौर पर इसमें तंबाकू की पत्तियां नहीं होती हैं। इसमें निकोटीन फ्लेवर, स्वीटनर और प्लांट बेस्ड फाइबर जैसे पदार्थ होते हैं। इसे जैसे मैंने बताया होंठ और मसूड़ों के बीच रखा जाता है, जहां से निकोटीन मुंह की अंदरूनी स्किन के जरिए ब्लड में पहुंच जाता है। इसमें धुआं नहीं निकलता है। इसे कई लोग इसके सिगरेट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये काम कैसे करता है? निकोटीन पाउच की मुंह की अंदरूनी जो स्किन होती है म्यूकोसा के जरिए सीधे ब्लड में पहुंचता है। ये ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है और डोपामाइन जो कि एक फील गुड केमिकल का लेवल बढ़ा देता है। इससे कुछ समय के लिए खुशी, सुकून या एनर्जी का एहसास होता है, लेकिन जब यह असर ख़त्म होता है तो दोबारा इसे लेने की इच्छा होती है और बार बार इसे लेने से निकोटीन की लत लग सकती है। तो अब इसमें दोस्तों कई तरह के ऑर्गेनिक और केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि निकोटीन नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और ये लत का मुख्य कारण है। सेल्यूलोज जो कि एक प्लांट फाइबर है, ये पाउच को टेक्सचर और साइज देता है। और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जैसे जो स्वाद और खुशबू बढ़ाते हैं, और स्वीटनर जो होते हैं वो कड़वाहट कम करते हैं। इसमें पीएच रेगुलेटर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट जो कि निकोटीन को मुंह की अंदरूनी स्किन से तेजी से अवशोषित होने में मदद करते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। और ह्यूमिक कंटेंट और स्टेबलाइजर जो कि नमी बनाए रखते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को स्थिर रखते हैं। और दोस्तों सवाल यह है कि युवा इसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? कंपनियां निकोटीन पाउच को अक्सर स्मोक फ्री और कूल लाइफस्टाइल का हिस्सा बताकर प्रमोट करती हैं। अलग अलग फ्लेवर, आसानी से जेब में रखने और बिना धुएं के इस्तेमाल होने जैसी बातों भी युवाओं को इसकी ओर आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों इस करके इसमें जो है युवा आकर्षित हो रहे हैं। और निकोटीन की पाउच में जो जैसे कितनी मात्रा होती है, तो ये जैसे अलग अलग ब्रांड और प्रोडक्ट के अनुसार बदलती है। आम तौर पर वैसे एक पाउच में 2 से 20 मिलीग्राम तक निकोटीन हो सकता है और ज़्यादातर प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो 3, 4, 6 या 8 मिलीग्राम वाले होते हैं और कुछ हाई स्ट्रेंथ पाउच में 10, 12, 15 या 20 मिलीग्राम तक निकोटीन होता है। तो युवा दोस्तों सिगरेट छोड़ने के लिए निकोटीन पाउच ले रहे हैं, उन्हें लगता है कि धुआं और तंबाकू ना होने की वजह से ये एक सेफ ऑप्शन है, जबकि ये सेफ नहीं है। इसके इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करने से लत को एक लत को छोड़ने के लिए दूसरी लत लग सकती है। तो इसमें निकोटीन जो है हमारी बॉडी पर नेगेटिव असर डालता है दोस्तों, और इससे कई शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के रिस्क हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी, हिचकी, मुंह में जलन, मसूड़ों में दर्द, हार्ट बीट बढ़ना, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, नींद खराब होना, दांतों की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डिजीज। तो दोस्तों ये कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें इसमें वैसे निकोटीन खुद कैंसर पैदा करने वाला कार्सिनोजेन जो पदार्थ नहीं माना जाता, हालांकि ये शरीर की कुछ सेल्स के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। और इस पे अभी दोस्तों इसके कैंसर को रिस्क को लेकर अभी और रिसर्च करी जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसमें सिगरेट को छोड़ने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। चलिए अब सुनते हैं एक गाना।
3: My favorite track, Yaar Bina Chain Ka Hare from the film Sahib.

दोस्तों, इस अगले गाने के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब मुझे यानी अमित दुआ को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।